0: तपाई रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ।
1: अब रंग फेसु मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ नला विश्वासी समक बसुगो जु रंग से तयारी लाबा दुई हिन्दा जयमसी तथा लासो नमस्कार स्पार्क माई फेथ अर्थात नला विश्वासी समक बसुगो अंक 12 रे रंगिता स्वागत मुला नाबियोग तामाङ तिगा रंग रंगला बेनान तिंसे परमेश्वर सेवा लावरी आवश्यक त्याग कादे लादोला इच्छारी गंभीर मुसुला मती 11 अध्यायला 16 दिन 21 धनदेला निगदेदा नई खरंग लसी गोना लसे थे निगदे मी ग्यामरी क्यार प्लांगबा कोला गदे रंगबन हिन्ना थे निगदे से रंग ला रोगदेदा न्योईसी चुरंग बिमुला खोराजिन देन बेसेदा मिगदे एनी गदे से परमेश्वर ग्याम सजय यांगला तिग्द विषम एनी गदेला नामसरी लबा रंगबा उदेकला गे गदे तुरोस देन सिडोन सहरी लबा हिंसम उन्मान थेनी गदे से बोरा खोनसी नेब्रा फोरसी रंग रंगला पाप थासी परमेश्वर पटि दोसेला मुला परमेश्वर देन रंगला लुई लागिरी याकर की अद्भुत देन लानन रोमांचक योजना मुला तिगा रंग रोसे रंगला तिगा लावरी पंक्षु मुला खेला लागे रंग तैयार लावन मुसुला तिगा रंग येसु ख्रिस्त बारेरी तैयार मुसुला नाचुरी मुला नादा पुइसुगो रंग नादा हनंग लसुला ना थेरी निला थेन दे तिगा रंग देन आवश्यक विश्वास मुला की परमेश्वर से रंगला लुईरी रंगला आत्मिक लक्षा गदे पूरा लाबरी बेनन ताम पिन्सुला यदि थेरंग हिन्बा विषम परमेश्वर से रंगला लुईला लागरी परमेश्वर से बोलवाट पूरा लाबरी रंगदा तयार लसुला बिबा ताम्री रंग तयार मुसुला मर्कुस 1:35 स्योरेन निम रंगबा भन्दा नछन येशु स्योन्जी सुनसान ग्लारी प्रार्थना लाबरी फेजी यंगला तयारीला बेनन भन्दा महत्वपूर्ण बो प्रार्थना हिन्बा यंगसे येशु देन मिला सम्बन्ध थानबरी एकान्त दुई फ्लागसे छनोट लादोला देन चु एकान्त दुईरी येशुसे यंगला आत्मज्ञान यंगदा प्रकट लाबरी ग्लगाप ताबा नेसन कादे ज्ञानवा ला लागिरी दुई तेला समावेश मुला हितोपदेश 24:27 फिर्क्यापला गे जिन्ना लाउ थेन्दे रंगला खेतारी तयार लाउ थेन्दे रंगला तिम सो परमेश्वर से रंगदा परमेश्वर से पिन्सु बगेन बोलोवार ला लागरी तयार लाबरी सेमला सु मुला उत्पत्ति ला पुस्तक री चु तयारी ला अवस्था 13:14 दोन जारी ताजी नाचा थे मिश्र लुईरी दास ताजी थेलिचा थेदा जेली बजी थेरङमा वर्षा गदे यसेबदा परमेश्वर सी मिश्रला दोस्रो बेनन भन्दा महत्वपूर्ण मिला रूपी उच्च लसुबारी तयार लाबरी आवश्यक मुला यदि चुसे छोन रूपी तयार हरे मुला विषम थेगेन नेतृत्व देन झिमेरुला पद्री थानमा हाबा प्रसिद्ध आत्मिक रूपी समहाम लाबारी हामला तासेला आरे मुबा परमेश्वर से मच्छा थेदा याकर्गी नम्र मी सुमुजी सोसुजी जोसी महसुस लजिकी परमेश्वर से थेदा लाबरी सेम्बाला बलवाट पुरा लाबरी थे रंगलान भन्दा परमेश्वर शक्ति दे पिनबा आवश्यक मुबा 1 कोरन्थी 9:25 तिगै खेलरी भो किन्बा निसी जम्मन थरीला तालिम किन्दोला थेनी गदेसी म्लासी मीबा इनाम याङबाला लागिरी थेरङ लामुला तर याङसिचा खाइमै अहम इनाम याङबाला लागिरी थेरङ लबामुला तयारी हाइमा दमन सजिलो आतामुला प्रतिस्पर्धा गम्भीरतासे किन्बा देन पौडेल डासेला चाहना थन्बा खेलाडीसे योनन रेसी तालिम किन्बा ता लामुला यदि रङसी पुराण तिनसे परमेश्वर सेवा लाभा संकल्प लसुबा मुला देन दत्ते संघर्ष देन अनुभव लस्युबा मुला विषम धैर्य लस्युगो दत्ते रंगसे भोक्तिबा निगदी यकर्खी दे गेन उद्देश्य लागिरी हिन्बा आमेन रंगनिजे परमेश्वर वचन ज्ञान आशिष यंगई आमेन। प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन विक्टर यम लिखित सन्देश याङ्ला भाषारी न्यन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमलाई बारे रङला केही प्रतिक्रिया मुसम 01661946 री सम्पर्क लस्युगो हस्त त्यो समय रिङ बिदा दाजी रङनी छङमदानु जयमसी नमस्कार।
2: जापानमा बसोबास गर्ने नेपाली अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूका लागि खुशीको खबर शैक्षिक सत्र 2026-27 लागि नेपाली पाठ्यक्रममा आधारित जापानकै अग्रणी शैक्षिक संस्था एभरेस्ट इन्टरनेशनल स्कूल जापानमा कक्षा 11 म्यानेजमेन्ट र साइन्स विषयका कक्षाहरूमा नयाँ भर्ना खुलेको छ। अनुभवी शिक्षकहरू आधुनिक शिक्षण वातावरण नेपाली पाठ्यक्रम जापानमा बसोबास गर्ने नेपाली अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूका लागि खुशीको खबर।

0: तथा पार्टी का लागि स्वदेशी तथा विदेशी कपड़ा को साथ ही उच्च स्तरीय कारीगर द्वारा सिलाई गरिन्छ। प्रोपाइटर रितेश परियार, सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9849185810 9849185810।
1: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज।

0: नया नेपाल को नया रेडियो
1: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ट्ज।
2: अब रंग फेसू मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ नला विश्वासी समक बसुगो जू रंगसे तयारी लबा दुई हिंदा जयमसी तथा लासो नमस्कार स्पार्क माई फेथ अर्थात नला विश्वासी समक बसुगो अंक 12 रे रंगिता स्वागत मुला नाबियोग तामाङ तिगा रंग रंगला बेनान तिंसी परमेश्वरला सेवा लावरी आवश्यक त्याग कादे लादोला इच्छारी गम्भीर मुसुला मती 11 अध्यायला 16 दिन 21 दन्देला निगदेदा नै खरंग लसी गोन लसे थे निगदे मी ग्याम्री क्यार क्लाङबा कोला गदे रंगमन हिन्ना थे निगदे से रंग ला रोगदेदा न्योसी चुरंग बिमुला खोराजिन देन बेसेदा मिगदे एनिगदे से परमेश्वर ज्ञान सजय यांगला तिग्द विषम एनिगदेला नामसरी लबा रंगबा उदेकला गे गदे तुरोस देन सिदोन सहरी लबाई हिंसम ओनमान थेनिगदे से बोरा खोन्सी नेब्रा फोर्सी रंग रंगला पाप ठासी परमेश्वर पटी दोसेला मुला परमेश्वर देन रंगला लुई लागिरी याकरकी अद्भुत देन लानन रोमाञ्चक योजना मुला तिगा रंग रोसे रंगला तिगा लाबरी पंक्षुमुला खेला लागे रंग तयार लावन मुसुला तिगा रंग येसु ख्रिस्ट बारेरी तयार मुसुला नाचुरी मुला नादा पुइसुगो रंग नादा हानंग लसुला ना थेरी निला थेन दे तिगा रंग देन आवश्यक विश्वास मुला कि परमेश्वर से रंगला लुइरी रंगला आत्मिक लक्ष्य गदे पूरा लाबरी बेनन्ताम पिन्सुला यदि थेरंग हिन्बा विषम परमेश्वर से रंगला लुइला लागरी परमेश्वर से बोलवाट पूरा लाबरी रंगदा तयार लसुला बिबा ताम्रे रंग तयार मुसुला मर्कुस 1:35 स्योरेन मीम रंगबा भन्दा नत्सन येसु सोन्जी सुनसान ग्लारी प्रार्थना लाबरी फेजी यांगला तयारीला बेनन भन्दा महत्वपूर्ण बो प्रार्थना हिन्बा यांगसे येसु देन मिला सम्बन्ध थानबरी एकान्त दुई फ्लागसे छनोट लादोला देन चु एकान्त

शुभो महाराष्ट्रे अवयो श्रीमद भागवत महापुराणर्गत गति कथा को भ्रगणे संगीत मान महाराष्ट्र स्वामी वाद आज्ञा गरी बस्यो प्रभुत्व लाई भगवान एकादशिंद्रज्ञा कर गोत्सव जी अब तिमलाई मैंने उपदेश को बारे में सारा प्रकाश पारदीने ज्ञान को बारे सारा समय प्रस्तुत कर दू अब इस मध्य में तिमी गंभीर पूर्वक एवटा कुरा सोच जब आत्मा जीव प्रपंच जीव तो मैं आज बताई हाँ तिमी गंभीर भर एवं कुरास अध्ययन कर उत्तर भन्न को भगवान ने कस्तो साधु को संगत मुक्ति को ढोका भूषण को संगत नर को ढोका धर्म अर्थ काम मोक्ष चार प्रकार का छोटो मतलब चार पुरुषार्थ एक मात्र पुरुषार्थ साधने जन को मुक्ति लाभ हो जिसको प्रकार अब यहां कस्ता कस्ता जन मुक्ति को लाभ में प्रकट भैया भन्ने बारे में कृष्ण प्रभा नाम गे को राजा बलि नाम गे को राक्षस बासु नाम गे को राक्षस हनुमान नाम गे को बानर अट फिर ज्यादा कपोत आदि जन यस्ता जनहरूले भागवत प्रभावबाट अर्थात सत्सङ्गको प्रभावबाट मुक्ति भएका छन्। एकैका पत्नी पूजा ज्यादा तुलाधर नामको वैश्य जटायु जमवान देशराज यस्ता जनहरू सारा भागवतको प्रश्न यस विषयबाट परमात्माको परम कृपाले मुक्ति भएका छन्। साधुको संगत मुक्ति भोगेका दुर्जनको संगत नरको हरे परम शरण साधु संगत महात्माको संगत गएर